नाम ले जा रो तने ने तिखा नहीं से प्याये चौसिया मी यायो सूरा उबरे शिवा ठे आलवी तो या प्राणी तिखा तने हो ना लाली जो मा जावी जैसे मुमा अस्वां कोने बाबी हेलो वे यू बी मैं मतिया मुबो